सत्संग मिले सो तरिया, मेरे माधव जी सत्संग मिले सो तरिया, गंग बनारस हिंदुआ

माधव जी सत्संग मिले सो तरिया, सत्संग मिले सो तरिया, साध संगत हुए निर्मला। एक उत्तम पंथ सुनो गुरु संग।

0: संगत कैसी जानी है।
1: केड़ी संगत, कैसी संगत, केहो दी संगत।
0: सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम विखानी है।
1: ओ संगत जिथे एको नाम दी आराधना हो रही, सारे एक नाम दे नाल जुड़े ने, ओ साध संगत।
0: साध संगत मिल होए तराबा,
1: ते संगत करन दे नाल वस्तु केड़ी मिलदी।
0: बिसर गई सब तात पराई।
1: इंसान कितनी भी कोशिश करे तात पराई नहीं छड़ सकता। तात पराई दा पाव है जलन, ईरखा, किसे नु वेख के जलना। तात पराई नहीं छड़दा, पर साहब आखदे ने जीव जदों संगत विच आ जांदा है ना सब कुछ छड़ जांदा।
0: बिसर गई

अकाल पुरख की रक्षा हमने, सर्वलोक की रक्षा हमने, ते एक ओंकार सतगुरु प्रसाद इस श्री साहब उत्ते उकरे हुए ने। संगत केवल ध्यान देना, किन्नियां पीढ़ियां लंघ गई ते गुरु गोविंद सिंह का वचन संभाले हैं ते साध संगत चढ़दी कदर। हक सतनाम, जे वचन की बेकदरी की है ते परचे ये पूरे दी निशानी। एक महाराज जी शस्त्र भी खुश होके बख्शते ने, ओदी भी कोई सेवा चाह ना करता ते देख लो गुरु दी खुशी। चाह पैदा थोड़े दिन ही हुए मैं शहीदा से बैठा सी ते मेरे मन च आया, आम असी कवितावां सुनते हैं, 18 शेर का खंडा खड़काया बाबा दीप सिंह जी आप सतनाम। फुरना बनिया कि बाबा जी थोड़ी खुशी लैण लई थोड़ी कृपा लैण लई केवल खुशी लैण लई सीस लैण लई जे परवानगी मिली। मैं क्या भी इंज खंडा बना के ना 18 शेर दे सतनाम सारा सोना उथे गुरु ग्रंथ साहब के चरणा च भी वह शस्त्र वह भी मतलब भी दर्शन खुशी लैण प्रसन्न होंगे। थोड़े चो एक बीबी ने 8 घंटे रोज 40 दिन लगातार बाबा दीप सिंह के दर से आख सतनाम रोज 8 घंटे 39वें दिन सोचा सी भी हुण 40 दिन पूरे होने वाले ने ते बाबा दीप सिंह जी केड़ी चीज चढ़ावां जिहदे ते प्रसन्न होवो। ओ ही सारे फिर उहदे मन च आया भी शस्त्र भेटा करां सर्व लोए दे हक सतनाम खुशी प्रसन्नता। एक परिवार गुरु साहब का निजी शस्त्र सेवा के रूप में संभाल के रखता है ते वेखो कोई विघन नहीं, ये पूरे दी निशानी है। वचन करता है बस,

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल ओ फ्रूटलेस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हन। एक, नाम बिना नरक कहीं न लेख है, नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ए शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसर तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ए भी आख्या है

रखा जाए, साफ सुथरी रखा जाए और इस धरती दे द्वारा इसनु साधना है कि इसकी आदतें न बिगड़न, एक खान पीन दे विच ही मस्त ना रह जाए। बहुत कुछ असी गलत खाने हाँ, बहुत कुछ असी गलत पीने हाँ, उसनु मैं डिटेल च नहीं कहना चाहता, आप समझ आओगे कि जितनी देर तक तन ही असी इसनु नहीं सुधारिया, इसका खाना पीना नहीं सुधारिया, उतनी देर तक नाम दा बीज नहीं बीज होएगा। सो नंबर एक है, और किस एक्सट्रीम तक इसनु सुधारना है वह प्रमाण देख के फिर मैं मन दे लेवल की गल आरंभ करा। हुण तुसीं सुन के आप जी ने अंदाजा लगा लेना कि बाबा जी किस किस्म की देही सानू चाहते हैं कि असी इसनु डिवेलप करिए। कहते हैं कंगू की काया रत्ना की ललता, अगर वास तन सास अठसठ तीर्थ का मुख टिका, तित घट नाम निवास उत्मत्ति सलाहना सच नाम गुणतास। हुण इसके अर्थ कहिंदे कंगू की काया, ये जिहड़ी तुहाडी काया है ना, ये इतनी शुद्ध होवे, इतनी शुद्ध होवे जिस तरह के केसर हुंदा है, कंगू केसर नूं आखदे, पूजा पाठ आदि दे विच समग्री दे विच केसर वरत्या जांदा है, केसर नूं शुद्ध मनदे हन। केसर जितनी शुद्ध ये काया होवे, वो काया केसर जितनी ता ही शुद्ध हो सकती है अगर इसकी शुद्धताई सुचम सफाई जो है वो रखी जाए। इतनी ए शुद्ध पवित्र होवे कि इस दे पास बैठिया इसदिया जिहड़ियां वाइब्रेशन हैं वो बहुत प्यारियां, बहुत शुद्ध हो। कई बंदियां दी काया ही ऐसी हुंदी है कि उन्हां दे नजदीक बैठ के तुसी डिस्टर्ब हो जाओ, नजदीक बैठ के डिस्टर्ब हो जाओगे, सिर्फ और कोई गलबात वो ना करन, पर जस्ट अफेक्ट ऑफ द बॉडी इज सो हैवी, क्योंकि बॉडी दे अंदर जो बहुत कुछ ऐसा है जो बढ़िया है वो चल रहा है। जेड़े अशुद्ध ख्याल हन, बुरे ख्याल हन, वो बॉडी नू भी अशुद्ध करते हैं, अते बॉडी तो उस तरह दी फिर बाहर जो वाइब्रेशन निकल दिए हैं उनका कोई साडे वाल अखियां पार्ट ऑफ द बॉडी हैं, लेकिन इन दे विच शुद्धता ही नहीं है। कोई साडे वाल स्टेयर करे तो असीं अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर दिंदे हां, ये अखां क्योंकि शुद्ध नहीं हैं, इन अखां च प्यार नहीं है, इन अखां दे विच मिठास नहीं है, इन दे विच दृष्टि दे विच विकार है, बुरियाई है, गंदगी है। तो ये अखां ही जदों असीं किसे वाल करदे हां दे मेक द अदर परसन फील वेरी अनकंफर्टेबल, क्योंकि देही शुद्ध नहीं है। एक पासे बाणी च तरसदे हन कि गुरु बाबा जी साडे वल निगाह करो, साधु महापुरुषां नूं लोग कहिंदे हन साडे वल अखियां करो, साडे वल देखो, कॉन्ट्रास्ट देखो, किसे दा साडे वल देखना सानू बॉदरिंग हुंदा है, किसे दा साडे वल देखना सानू शांत कर दिंदा है। अखां ते ओही हन, देही ते ओही है, किसे दियां अखियां इतनियां शुद्ध हो चुकियां हन कि उन्हां दे विचों रब अते उस दियां वाइब्रेशन मिलदियां हन, किसे दियां अखियां अजिहियां हन उन्हां दे विचों कुछ होर ही दिसदा है। देही नूं शुद्ध शुद्ध करो, पवित्र करो। कंगू की काया कहिंदे काया नूं केसर वर्गी शुद्ध कर दिओ। रत्ना की ललता नंबर दो, ललता आखदे हन इस जीव नूं जबान, कहिंदे ये जिहड़ी जबान है इस दे विच्चों जिहड़े लफज निकलन, बोल निकलन, वो इस तरह होण जिस तरह रतन हीरे मोती जवाहरात निकल रहे होण। ये देही दी साधना। हुण आप सारे ही अपने आप नूं सवाल कर लो कि जदों असीं बोलदे हां उदों की निकलदा है, की निकलदा है? रतन निकलते हैं, जवाहरात निकलते हैं, मोती निकलते हैं, यानी वचन ही मोतियां वर्गे होन, मोतियां वर्गे वचन होन।

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करने वाले, अपने आप नू सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ अते जो विचार है उना दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू एंड देन हाउ द सेकंड थॉट इज फॉलोड बाय। कहते ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ अते फिर अपने अंदर, जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरता है उसनु देख सकते हैं, ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरता है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरता है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरता है, असी अलग चेयर पे बैठ के सिर्फ उसनु वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उस उन्हां नू देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देयर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते अस्वारी करो, भाव के उन्हां नू इनडिफरेंट होके, उन्हां नालों अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकोनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप में थॉट्स को अलग कर ले, अपने विचार अस्वारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है, ना उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच देम। सिर्फ उन्हां नू देखना है। अपने विचार अस्वारी कीजे दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्हां नू देखो। तुसी कोशिश करके करन दी देखो, कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नू करना है। अपने विचार अस्वारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनू देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नू देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया। बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप के विच जदों के थॉट नहीं है, की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बींग। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बींग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे
ਉਤਨਾ ਉਤਨੇ ਉਹ ਗੈਪਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੈਪਸ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਰ, ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਅਚਾਨਕ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ?

ने गुण ने तू इनी बाणी पढ़ता है, शस्त्र विद्या भी सिखदा पे है, गुरबाणी भी विद्या भी सिखदा पे है। एक गल दस, संगत दे झूठे कौले क्यों मांज रहे हैं? क्यों मांज रहे ध्यान देना, ये बड़ी गुण जड़ा ना, ये माधो साधु जन।

कीर्तन सिखाण दी तुसी सेवा ले ली है। ये सच्चे पातशाह शुक्र इन्ने खुले पाठ वंडन दी तुसी सेवा ले ली है। सेवक बने प्यारे ओ कमाई संभालनी सीखनी है ते तुहानू बख्शियां कोलों सीखी जाएगी। असी नानक भगती करनी है, रावण भगती नहीं करनी। बाबा नंद सिंह जी ने एक करी इनान करते पे एक सज्जन खड़ा सी कोल उदे मन च फुरना बनया मूह नहीं बोलिया कहिंदा बाबा जी का रंग थोड़ा काला है। बाबा जी का रंग काल सावला सी फुरना ही बने फुरना बाबा जी का रंग ना गोरा नहीं है काल सावला जा काला जा। ते बाबा जी गडवी उत्ते पांदे पांदे ना कहंदे की सोचदे मेरा रंग काला है। ते बाबा जी कहंदे पता क्यों काला है पाप कर करके काला हो गया। देखो सवा बारह का इशनान एक सवास बिरथा नहीं जाता पर मन कितने रखे सेवक गुस्सा ना करो सानू कोई कह दे ना तू काला है या काली है तो मेरा ख्याल दस श्लोक ना सुना लीए तसली नहीं होती। महापुरुष का जवाब देखो महापुरुष का जवाब पाप कर करके काला हो गया मैं की करा। धारना बनाते वाहगुरु काली हो गई नाम तो बिना।

बाबा जी ने फिर ताड़ना कीती, कहंदे बिल्कुल ठीक लेकिन किथे लिखिया गुरु ग्रंथ साहिब आखो साधना। गुरु ग्रंथ साहिब दे किते लफज नचोड़ कढ़ो गरीबी दी पढ़ाई, गरीबी दी सत बचन दी पढ़ाई, निम्रता दी पढ़ाई। कहन लगे सानू कहंदे फारसी सिख गया लेकिन बिल्कुल ठीक इथे ते सत बचन दी पढ़ाई। कोई गल कहनी सत बचन जी, अच्छा जी सत बचन।

0: आई योग आसन पहुंचे हजूर ने दूर ही तक देखे प्यारी सात संगत जिस सिख तू बगैर मेरा काम नहीं सी ना चलता वो भाई जोगा सिंह आ गया आ जा जोगिया साढ़े कोल आ जा भाई जोगा सिंह सुन के बड़ा हैरान मैं तो समझिया सी कि गुरु साहब मेनू जोड़िया च खड़ा करनगे पर ए तो प्यार नाल पै बुला भाई जोगा सिंह साहबां दे कोल पहुंचे जोगा सिंह भाई आखा जी आया सोना सिख तू है सरदार बीबा घर नार परिवार नू छड़ के ते साडे नाल ते कीता प्यार बीबा भाई जोगा सिंह सोच मन मैं तो समझिया सी गुरु अंतर जामी जे अंतर जामी होंदा तां हुशियारपुर दी करतूत नू जानदा जे हुशियारपुर दी करतूत नू जानदा होंदा तां मैनू सजा दे पर गुरु तो मेनू प्यार पिया कर जे गुरु अंतर जामी नहीं जे गुरु इथों दिया नहीं जानता तो मेरी दरगाह कि फड़ेगा बारह साल एवं गुरु की सेवा की आखो सेवा अंतर जामी सदगुरु सोचन लग सिख नू काम दे कुंड विचों कढ़िया है हुण अशरदक दे खाते च पिया पैंदा गुरु नू पता है शरदा तू हीण पिया होंदे हजूर ने कहा जोगे आ मेरे वल तक भाई जोगा सिंह ने तकिया इतना नूर सी साहबा ने चेहरे ते नजरा नीवियां हजूर ने फिर किया जोगे आ मेरे वल क्यों नहीं देंदा तकदा है फिर तीजी वेरी जिसेले साहबा ने किया जोगे आ मेरे वल तक भाई जोगा सिंह ने जिसेले कलगीधर पातशाह वल तकिया भाई जोगा सिंह हैरान हो गया कंबन लग गया की तकदा है कि श्री आनंदपुर साहब दे सोने तख्ते बहन वाला ते राती वेसवा दे चवारे ते पहरा देण वाला इको ही है दोवे हथ रो पिया भाई जोगा सिंह अच्छा मैं पापी हां मेनू बख्श पर मेरा जेड़ा पोल है संगत च ना खोलो आखो श्री भाई अगे पिछे सजा दे लिया जे संगत बोलना था हजूर कहन लगे जो गया मैं तो तेरी करतूत नू वेख के अडिट पिया करदा पर तू कहन लगा तेरे मन च फुरना बढ़िया कि गुरु नू पता ही कोई नहीं मैं तो सब कुछ हर अंतर जामी जाने फिर बोलत आप ते तू कहने गुरु नू पता है नहीं तो भाई जोगा सिंह कहने लगा महाराज ए भी चंगा होया आज पता लग गया है कि तू अपने सिख दी रखिया कर कलगीधर पातशाह जी कहने लगे एदा मतलब भाई जोगा सिंह तो मेनू अजमाया है मेरी अजमायश की थी है भाई जोगा सिंह चुप कर गया ते माद गुजरी दे लाल दे सामने तकिया ते किया जो गया मैनू अगे भी सिखा ने बड़ा अजमाया पर मैं इम्तिहान च पूरा अजमायश पूरा पहले जामे सिख ने अजमाया बाबर दी जेल च अरदास की थी, मैं उथे पहुंच के ते बाबर दी चक्कियां पीटी पंजे जामे च दिल्ली दी संगत ने अजमाया के चंदू हंकारी दा नाता नहीं लै तो जो गया मैं संगता दा हुक्म सिर मथे रखे जे मैं कुड़माचारी दी असीत च चंदू ने कर जांदा चंदू मेरे ते फुलां दी वर्षा करदा पर मैं अपने सिखां दा हुक्म मर के जिसले चंदू दे कर गया तां चंदू ने मेरे ते सड़दी बलदी रेत पाई पर मैं अजमाइश ही पूरा विधि चंद ने मेनू अजमाया छेवे दुशाले लैके भजा जाता है पिछे बादशाह की फौज आ विधि चंद ने छेवे पातशाह का ध्यान करके पठियारी दे बलदे पठ में छाल मार हजूर कीर्तपुर बैठे सिखो बड़ी गर्मी हो रही है जल लियाओ छेवे पातशाह जी दे शरीर ते जिस वेले जल पाया सिंघा ने तकिया हैरान हो गए कि साहबां दे सारे शरीर ते छाले छाले हो अधूर कहन लगे जो गया फिर बिनी चंद नू तत्ती वारी लगन दिती ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,
1: ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਜੇ ਸਾਈ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ।

de इरादा समय अचानक राजे नु जाग हुई। राजे ने की सके रानी वाला पलंग खाली पे भाई साहब भाई गुरदास जी लिख दे रानी वाला पलंग खाली है। थोड़ा समा राजे ने उड़ीक की थी और जिस वेले रानी नू राजे ने नहीं तकिया तब भाई साहब जी लिख दे राजे दे मन च बड़ी है अद्धी रात दा समय रानी किधर चली। राजा उठिया महल दे अंदर रानी नू लभण लग गया। सारे कमरे वेखे पर रानी दिस ना भी मन विच वरत गई है। तो प्यारी साध संगत राजे दे मन विच रानी दे मतलब चंगे ख्याल भी आन लगे मंदे भी आन लगे। रानी दा मेरे नाल प्यार तो बढ़े पर अद्धी राती रानी दा महल विचों गैर हाजिर होना ए तां मैनूं धोखा दिंदी। इन्हां सोचां ते दलीलां राजा अपने पलंग ते बैठा लेट गया नींद आ गई। दिन चढ़ेगा जो राजे ने अखां खोलियां की तकिया राणी अपने पलंग ते लेटी हुई। राजे ने आवाज दित्ती राणीए उठ। रानी उठी राजन हुक्म करो। राजे ने पहला सवाल किया रानी ते कि रानी सच दस तू राती किथे गई सी। अद्धी रात तू गैर हाजिर सी किथे गई सी। रानी सोचन लगी जे मैं सच दसदी हां तां जिथे मैं रोज जांदी हां हो सकदा है राजा रुकावट पा दे। तो राणी रोज किथे जांदी सी। आई साहब जी लिखदे साध संगत मिल गाम दे कराती जाए सुने गुरु। रोज सत्संग भी जांदी सी महापुरुषां दी संगत रात नू जांदी सी। रोज डेली नितनेम बनिया होया सी चाहे मीं होवे चाहे हनेरी कैसा भी वैदर क्यों ना होवे राणी तारा रोज नितनेम नाल जांदी सी। सोचिया जी सच बोलदी तां हो सकदा है राजा सत्संग तू रोक देवे पर मेरे ते प्राणा दा आधार है सत्संग। मेरे जीवन दा निशाना है गुरु दी बाणी। रोटी मिले चाहे ना मिले पर मैं सत्संग तू बगैर नहीं रह सकता। ए प्यार दी निशानी ए प्यार है। राणी सोच राजे ने फिर किया राणी बोल तू राते किथे गई सी। जे झूठ बोलदी हां तां पति परमेश्वर स्त्री वास्ते दुनियादारी दा सब तू वड्डा रिश्ता पति है। जे सच बोलदी हां तां सत्संग तू विछड़दी। पर राणी ने सोचिया मेरा जीवन सत्संग है। जिस तरह मच्छी पानी तो बगैर नहीं रह सकती सत्संगी सत्संग तो बगैर नहीं रह सकता।

portano in salda barca, che chitano smarti, arras ovegi, hukmanama, kraprasadi deg, bacciamello, kurmuk parvarvello, jo seva hai ovi parvan karni, to avhon. अनुसारदा पाठ सारे मिलके करिए अनुगुरु नानक पातशाह मेहरबान सदगुरु आप जी दे प्यार वाले गुरसिख माई पाई साहब जी जिन्हां नूं आरती ने बख्शिश करके ए दात बख्शी और आप जी दे दरबार ही जुड़ के आप जी दे बख्शे खजाने विचों सतगुरु आप जी दे पवित्र पावन शब्द दा आदर करदे हैं कीर्तन भेंट गाउण अरदास कराउंदे हैं अंतरगामी गुरु जी आप अपने गुरसिखां नूं बच्चे बच्चियां नूं नामदान बख्शो कारोबार च वादे बख्शो सिखी जीवन सत्संग दी दात बख्शो।

एक ते मैनू सलाम नहीं कीती ते दूसरा कबीर मैनू झूठा बादशाह कहना। हुण बादशाह ने कहा, ऐ कबीर राम नाम जपना छड़ दे।

तू बेअंत को बिरला जाने, को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द। रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा, तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा। नाना रूप तरे बहुरंगी सब तेरे निया, तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत।

तब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोठ महला चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

एकदम थोड़ा मन उल्टी होएगा, एकदम हर एक बंदा का मन फिर शुरू होएगा, सब कॉन्शियस तो थॉट शुरू आएगा, फिर तुसी अंदरों वाहेगुरु, एक साथ आएगा वाहेगुरु कटेगा, दोबारा आएगा वाहेगुरु कटेगा, फिर हौली हौली अपना मन साफ हो जाएगा।

बाबे ने आख्या ओए चंद्रया असी कुछ तेरे कोलों मंगण नहीं दे आए असी ते तेनू प्यार करके तेरी मित्रता करके तेनू मिलन वास्ते आए हैं। बाबा जानी जान है बाबा ते लोक परलोक दी सोझी रखदा है बाबे दे ओले की हो सकदा है। गुरु नानक दरवाजे ते खलोते आवाजा मार रहे ने ओए मित्रा चंगा तू मित्र है किन्नी प्यार नाल तैनू मिलन आए हां ते तू अंदर लुकिया बैठा है। संसार है घर परिवार दे आखे लग के ए जीव कई बार बुजुर्गां दे नाल इहो जिहियां गल्लां करदा है पर सतसंगियो बाबा नंद सिंह जी बख्शिश करदे सन जिहड़ा इंसान अपने बुजुर्गां दा सत्कार नहीं करदा बुजुर्गां दी संभाल नहीं करदा वो कदी भी गुरु नानक दी नजर विच बख्शिया नहीं दे जांदा।

जंगल वियावान है, कौन मेरा समान चुकेगा, किमें मैं जावांगा। उच्ची देनी आवाज मारी, भी है कोई इहो जिहा जिहड़ा मेरा भार चुक लवे, मैं मजदूरी दे देवांगा। जदों बाबे ने उच्ची आवाज मारी ना, बाबा की तक रहा है, ओ सामने झाड़ियां वलों एक नौजवान गोल पगड़ी लंबा चोला, ये नौजवान आया, बाबा किथे जाना है? भई मैं सतगुरां दे दर्शन करन चलिया ते संगत विचों बिछड़ गया, पार मेरे कोलों चुकिया नहीं जांदा, लिया बाबा तेरी पंड मैं चुक लैंदा। बाबे दी पंड सिर ते चुकी ते बाबे दा हाथ अपने मोढ़े ते रख लिया।

राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे खेद करे अर बहुत संतावे आयो शरण तुहारे कर कर हारियो अनक बहु पाती छोटे कथु नाही एक बात सुनता की ओटा साथ संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिनते धीरज पाया संति मंत दियो मोहे निर्भव गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महाबिखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया प्रगासा पया पद निर्वाणी।

सवारे हमरा गुण अवगुण ना विचारिया। अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक तारिया। अपने बालक आप रखियन पार ब्रह्म गुरुदेव, सुख शांत सहज आनंद भय पूर्ण भई सेव। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जिवालियन जाका वड प्रताप। दोख हमारे बक्सियन अपनी कलतारी, मन बांचत फल दित्यन नानक बलिहारी।

मैं तेरे रस रस गुण गाऊं, मन करके तेरी मैं शिव सलाह करा, मन करके तेरी भक्ति करा। एक हन गुण गाउने, एक है रस रस गुण गाउने। गुण गाउंदिया तो भाई कई बेरा मन गैर हाजिर भी हो सकता, पर जिन्हां ने तेरे रस रस गुण गाए हन उन्हां नूं तां आपे दी भी सुध नहीं रही, उन्हां नूं तां अपना आप भी विसर गया। इसलिए ये अमोलक दात है कि मैं तेरे रस रस गुण गावां, तेरे विच गुआच जावां, तेरे गुण गाउंदिया मेरी सुरत तेरे चरण

मोरे हृदय बसो गोपाल। गोपाल भी उना दे हृदय विच वसदा भाई जो उस दे रस रस गुण गाउंदे हन। अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दा निवास भी उना दे हृदय ते ही होया जिन्हां ने उदे गुण गाए। एक दर्शन करना है, एक दर्शना तो रस मानना है। दर्शन तो सारे ही करते हैं पर दर्शना तो रस मानना एक अमोलक दात है, एक अमोलक वस्तु है। भाई साहब भाई नंद लाल जी जो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे 52 कविया विचों श्रोमणी कवि सन, आप बड़े उग्र तपी सन। पता नहीं कितने जन्मां दी आप दी तपस्या सी जिस दे सदके रसक बैरागी दुष्ट दमन दाता गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जैसा उन्हां नूं गुरु मिल गया। एक समय दा जिक्र है कि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह भाई नंद लाल जी ते अति प्रसन्न होए ते कहन लगे नंद लाल साडा जी करदा है कुछ मंग। किडियां खुशियां होंदियां हन जदों पिता आप अपने पुत्र नूं कह रहा होवे बेटा तू बड़े चंगे कर्म कीते हन, तू बड़े चंगे कम कर रहा है ते मेरा जी करदा है तू कुछ मंगे। अज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने कहा नंद लाल साडा जी करदा है तू कुछ मंग। तां भाई साहब जी दे नैन कटोरे भर आए, ओ मेरा दे साईं ओ बख्शिशां दे दाते इस कीत नूं कह रहे हो कुछ मंग। हां तैनू ही तो कह रहे हां तां फिर जे कृपा करन लगे हो तो फिर मेरे ते ए कृपा करो के दीते अंबरा लज्जते दीदार बख्श। ए दीते ए जो अखां हन ए आपदा दर्शन तो कर रही हन पर इना विच रस नहीं है, वो रस तेरी कृपा द्वारा प्राप्त हो सकदा है। इसलिए जे तुठे हो तो दीदे अंबरा लज्जते दीदार बख्श, इना नेत्रां विच लज्जत बख्श तेरे दर्शना तो पूरन आनंद मान सकन। सीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, इस सीने विच मेरे हिरदे विच तेरे सिमरन भी भुख लग पवे। क्योंकि भुख ना लगे तां कितने भी स्वादिष्ट पदार्थ सामने पए होन ओ चंगे नहीं लगदे ते जे भुख लगी होवे तां साधारण पदार्थ भी बड़ा स्वादिष्ट लग रहा होंदा। उच्चारण करो श्री। इसलिए भाई साहब कहंदे हन हे कलगीधर पातशाह जे तुठे हो तां सच्चे नाम दी तेरे सिमरन दी मेरे हिरदे विच भुख लग पवे। साचे नाम की लागे भूख उत भूखे खाए चलिए दुख। जिन्हां नूं सच्चे नाम दी भुख लग गई भाई जन्मां दे कीते होए पाप उन्हां दे मिट गए। क्योंकि सच्चे नाम दी जिथे भुख है उथे पाप ठहर ही नहीं सकदे। उचारण करो श्री। इसलिए भाई साहब ने ए दात मंगी दीदा अंबरा लज्जते दीदार बख्श, सीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, ई दिले बिरयाम मारा शोक दे। भाई साहब कहंदे हन कि मेरा दिल विशे विकारां दी अग विच पुज चुका है ते तेरी कृपा होवे तां प्रेम मिल सकदा है ना, तां प्रेमा भगती मिलदी है जे गुरु दी कृपा होवे। इसलिए इस पुज चुके होए दिल नूं प्रेम ला मैं तेरे चरणां विच जुड़िया रहा, मेरा मन तेरे चरणों विच जुड़िया रहे। ए शरीर देश होवे परदेश होवे घर होवे बाहर होवे दुख विच होवे सुख विच होवे हे वाहिगुरु मेरा मन तेरे चरणों विच जुड़िया होवे।
दीदाए अंबरा लज्जते दीदार बख्श, छीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, ई दिले बिरियाम मारा शौक दे, दर गलूयम बंदगी दा तौक दे। तौक कहंदे हन पटे नूं, ते भाई साहब नंद लाल जी कहंदे हन मैं तेरे दर दा कूकर हां, ते ओ कूकर मालक दा खवांदा है जिस कूकर दे गल विच पटा होवे। आख्या मेरे गल विच पटा पा के मैनू आप दा बना दे। ए पटा केड़ा है जो भाई साहब नंद लाल ने कहा, आख्या बंदगी दा पटा मेरे गले विच पा, श्वासां दे अंदर बार आंदियां जांदियां मैं जपदा रहा श्री वाहिगुरु। आख्या होर भी कुछ मंगना है, ता भाई साहब कहंदे ने कुछ होर भी मंगना है, क्योंकि आप तुठे हो, आपने क्या कुछ मंग, मैं तदे ही तो मंग रहा। आख्या मंग भाई होर की मंगदा है, ता भाई साहब नंद लाल जी कहंदे ने हिजर मारा आरजूए वसल बख्श, तेरे मिलन दी शिक मेरे हिरदे विच वसी रहे, क्योंकि जिस हिरदे विच ईश्वर दे मिलन दा प्यार नहीं, ओ हिरदा हिरदा नहीं है, ओ ता एक शमशान भूमिका है। जिस तरह शमशान भूमिका विच मुर्दे जलदे रहिंदे हन, आख्या ओ हिरदा भी ऐसा ही तपदा रहिंदा है, जलदा रहिंदा है, जिस हिरदे विच साई दे मिलन दा प्यार नहीं है। उच्चारण करो श्री हिजर मारा आरजूए वसल बख्श, ई खजाने चश्म मारा फजल बख्श, हर सरे मुयम जुबां कुन अज करम। भाई साहब कहंदे ने हे गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह, जे प्रसन्न होए हो तो फिर जितने मेरे शरीर दे रोम हन इन्हां नूं जीभा ला दिओ। हर शरीर दे नाल 7 करोड़ रोम होंदे हन, ते भाई नंद लाल जी कहंदे हन कि हे गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह, क्योंकि असी कलयुगी जीव हां, ते कलयुगी जीवां दी उम्र भी छोटी है, दिन रात भी छोटे हन, ते मैं चाहुंदा हां थोड़े समय विच मैं तेरा बहुता जस करां, वध तो वध तेरे गुण गावां। इसलिए मेरे हर शरीर दे रोम ते जीबा ला दे, ते फिर एनिया जीबा नाल मैं की करां। आख्या हिजर मारा आरजूए वसल बख्श, ई खजाने चश्म मारा फजल बख्श, हर सरे मुयम जुबां कुन अज करम, ता बिगोयद विस्व हकरा दम बादम। दम बादम मैं तेरे गुण गावां, ते की मंगा मैं ए मंगा तेरे कोलों के रस रस गुण गावो, ठाकुर के मोरे हिरदे।

आप केस सुखा रहे हो। अमृत वेले दे दीवान दी समाप्ति होई, अपने स्थान ते आके आप केस सुखा रहे हन। ते सूरज दी पहली किरण जदों निकली ते आप दे केसां दी तार ते जदों पई ना, ते भाई साहब जीतां विचों वेख रहे सन ते विस्माद हो गए उस केसां दी तार नूं वेख के। ते आप कहंदे ने दीन दुनिया दरक मंदे, ए दीन ते दुनिया तेरी जुल्फां विच वधे होए हन, इउं मालूम हो रहा। तेरे एक रोम तो मैं दो जहान भी वार देवां तां वी घट हन। दीन दुनिया दरक मंदे, आपरी रुख सारे मां, हर दो आलम कीमते यक तार मुए यारे मां। मान में आरे मताबे गमजे मैं गाने हूं, मेरे पास केड़ी वस्तु है जो मैं तेरे तो वारा। मान में आरे मताबे

परलोक भी सुहेला होंदा। तो भाई साहब कहंदे न हर दो आलम कीमते यक तार मुए यारे मां, मान में आरे मताबे गमजे मैगाने ऊ, यक निगाहे जा फिजाए बस बवद दरकारे मां। गाहे सूफी गाहे जाहद गाह कलंदर में शवद, रंग हाये मुख्तलिफ दारद बुते ऐ यारे मां। राजन में तू राजा कहिए पूमन में पूमा, ठाकुर में ठकराई तेरी कौमन सिर कौमा। पिता मेरो बड़ो धनी अगमा, उस्तत कौन करी जे करते देख रहे बिस्महा। बस तेरी उस्तत असी इसलिए करदे हां कि तेरे चरणा नाल साडी सांझ बन जावे, साडी झोली ए दात पा दे के रस रस तेरे गुण गाउंदे रहिए।

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, एक तेरे सदक का फल है जेड़ा अज मैनू नवा जीवन मिले। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता। रजनी, मेरा रोग तो उतर गया। रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी, मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, किथे ने, किथे ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबील वाले बाबा जी तो पानी पियाया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग कि ठीक होया?
0: इस सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे। तो मैं रिड़दा रिड़दा ऐ छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नु फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पए सन।
1: तुसी तुसी टाणी नु फड़ के पानी च गए सी ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, तां फिर तुसी ऐस हाथ नु भी पानी च पाओ, मैं अपनी अखां नाल इस जल दा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता दे दरबार श्वेखिया सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म पारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी।

दीदार करन वाला तड़फ रहा सी और रह न सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वहे वह चले जियो नेत्रा चो जल वह रहा सी ते दर्शन करन वाला दर्शना दी तांग विच शब्द पढ़ता सी ते उदो दर्शन देन वाला आनंदपुर साहब बैठा सी ते हुण जदो दर्शन देन वाला दरिया दे कंडे ते आ गया है ते हुण दर्शन करन वाला आनंदपुर साहब पहुंच गया। आनंदपुर साहब सतगुरां दे दरबार विच शरीर तां बेड़ी विच है पर अज सुरत पहुंच गई आनंदपुर साहब सतगुरां दे दरबार दी सेवा करनी है। सतगुरां ने तीसरी आवाज दिती उह सैदिया चंगा प्यार करदा चंगा याद करदा हुण बेड़ी कंडे भी नहीं लाउंदा ते जदों सतगुरां ने

ऐसी कृपा मुहे करो। एक साखी है, सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नो मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया की लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी, वो कवि भी सी, 52 कविया विचो। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो? महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए, कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तेन इस राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगे तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो? इहदे वर्ग। महाराज कहन लगे राजन तू इहदे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, ये तेरे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा है, दोनों कहते भी कृपा कर। असल दात उहदा नाम है, ये उहनू दिंदा जिहदे ते उह कृपा कर दे। इस शब्द विच भी ये मंग मंगी है, ऐसी कृपा मोहे करो, तेरे बख्शियां दे चरण होण ते मेरा मथा लग जाए, सात संगत दी चरण धूड़ प्राप्त होए।

नदर करे जो किस भावे नान का तब तो हंस करे अमृतसर अमृतसर गुर सतगुर निर्मल नाम दिया नानक उत्तम पद पाया जाए।

0: Peter.
1: श्रवण करो भाई बलबीर सिंह जी दे रागी जते पासों शब्द बिसर गई सब तात पर आई जब ते साध संगत मोहे पाई।